0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम टेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार।
1: स्वास्थ्यका हरेक पक्षलाई समेटेर तयार गरिएको सचेतनामूलक कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार।
0: एसजीसीएस नमूना सामुदायिक अस्पतालको प्रस्तुति रेडियो मर्स्याङ्गदी, रेडियो चौतारी र रेडियो भोटे ओडारबाट एकैसाथ प्रसारण
1: प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: राखोते रेडियो नेबरी तो भाइ म भिजो रेडियो रे रेडियो मर्संग दिरे तमु केरी समाचार खाल खाइ भौ
1: आम दिने गम नेबे झुमले आम जे थ्यालो जे भिजो
2: थाली दे सेवाग्राही मरकरी नेपाली कांग्रेस सर्व केन्द्रीय सदस्य रे लमजुम दकाले आरक्षण कोठर बे केन्द्रीय सदस्य मे उम्मेदवार पिबरी प्लुले जाना नेता मे न्यू
1: के मए रेडियो मर्संग दिरे क्याली दिनै नानर बे 8 बजे खबे तमु के समाचार नेबरी आमले ओ

छ्याजलो रेडियो मर्सङदी 95 मेगाहर्ज दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङदी .org नानर 8 बजे खबर तमुके मर्सङदी फेतेरी खुसीमाया तमुसोला तेबा म ओसरी करबे फेते पचास मेगावाट मर्सङदी बेसी जलविद्युत आयोजना बनेवै लागि विद्या व्यवस्थापन सिटी जनैन नेतृत्व रित प्लिउलो ब्याङ्गैन ऋण लगानी सम्झौता सामाजिक सञ्जाल दकिया मानव सेवा समरी मुबाक्री पिउना परिवार सम्पर्क शुक्रबार पारिवारिक मिलन तसिमो दोर्दी एघरी सार्वजनिक सुनवाई उत्कृष्ट केलभ उपभोक्ता समिति सम्मान ते सवारी ज्यानमुदरी बहुदिया प्रतिवादी खापोहिमो दिव्यज्योति हाइड्रो पावर लिमिटेड जी लमजुङ्गर मुभा मर्सङदी फ्योरी बनेल बनेवा सुरुल्लाभा 50 मेगावाट मर्सङदी बेसी जलविद्युत आयोजना विद्युतीय व्यवस्थापन सुनिश्चित तैमा मर्सङदी नासापालिका 6-9 दिएर बेसी नगरपालिका 6-10 सबैवटा क्षेत्री बनेवा सुरुल्लाभा जो आयोजना सिटिजन ब्याङ्क ऐन नेतृत्वले प्लिउलो ब्याङ्क जी 7,50 करोड़ रूपियाँ छे लगानी लभा सम्झौता तैमो जो आयोजना सिटिजन देवालो प्रभु ब्याङ्क नेपाल एसआईबी ब्याङ्क दिएर एनआईसी एसिया ब्याङ्क जी छे लगानी लभा तैमो जो गृह कार्यक्रम महाजरी प्रवर्धक दिव्याज्योति हाइड्रो पावर लिमिटेड दिएर ब्याङ्क ऐना महाजरी ऋण सम्झौता हस्ताक्षर तैमो कुल लागत करिब 11,30 करोड़ रूपियाँ अनुमान लभा जो आयोजना 67% छे दिएर 33% सो पुँजी लबा तब तैमरी वित्तीय व्यवस्थापन लबा आयोजना जे बीमो लमजुङ सदरमुकाम बेसी चरारी मुभा मानव सेवा आश्रमरी आश्रय किरीबा कृपिउला पारिवारिक सम्पर्क खैम सामाजिक सञ्जाल र फोटो तेह्र भिडियो सार्वजनिक तपाईँसो अर्जुन मानव सेवा विवाह मिहिना परिवार आश्रमैना सम्पर्क खैम 2078 मंगसिर 15 गते मध्य नेपाल नगरपालिका 10 हाँडी खोलादेखि उद्धार लैमरी आश्रमरी पोखोबा थिए नासरी अपरिचित दिएर व्यवहारशीलता वा अवस्थारी नासिमैजी प्रहरीले खबर लब लिसु प्रहरीलाई प्रहरीजी थिदे उद्धार लैमरी मानव सेवा आश्रमरी पोखोलो मानव सेवा आश्रमजी आश्रमरी मुभा विभिन्न क्रियाकलाप दिएर गतिविधि दिए सामाजिक सञ्जाल फेसबुक दिएर टिकटक थिएन परिवारसम्म पुरे थिएन परिवार भिडियो मैमरी सम्पर्क खबा बिमो दोर्दी नासापालिका वडा नम्बर 1 भातेरी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम छिमो आर्थिक वर्ष 82-83 वडा कार्यालय तथा प्रभाव तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन लब योजना दिने कार्यक्रम बारे सेवाग्राही न पृष्ठपोषण संकलन लब उद्देश्य दिए वडा कार्यालय सुनवाई आयोजना ललो कार्यक्रम सरकारवाला निकाय सेवाग्राही लगायत जनप्रतिनिधि नागरिक समाज गैर सरकारी संस्था तयो उपस्थिति मूल वडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी अध्यक्षता तथा कार्यक्रम वडा कार्यालय तथा चलिबा आर्थिक वर्षरी सञ्चालन तथा विकास निर्माण योजना सेवा प्रवाह ऐन अवस्था तारखब कार्यक्रम दिएर जन अपेक्षा बारे छलफल ललो सामाजिक परिवर्तन नै लागि सक्रिय संस्था नेपाल परिवर्तन निर्माता युवा नेतृत्वजी बुधबार सुन्दर बजार दिएर रायन 7 अरबवटा क्षेत्री क्यार प्रतिभा नयु मैले कै तमी अभियान सुरुलाई म संस्थाजी नेपाल रोडका सोसाइटी जिल्ला शाखा लमजुङ दिएर लायन्स क्लब ऐन सहयोगी 80% नयु मैले कै तमीबा बिमो क्यारी मुभा नयु फेरि माया जिम्मेवारी दिएर मानवीयता भावना अभिवृद्धि लबदे बालयो फ्रेसी मैदे सामाजिक सेवा फेरि प्रेरित लब संस्थालाई उद्देश्य मुभा बिमो चौभन्दा 900 संस्थाजी सरसफाई अभियान नयु न विरोधी जागरूकता अभियान लगायत विभिन्न सामाजिक अभियान सञ्चाललाई खाइम लमजुङ्गरी फेन्सी संघ व्यवसायी महिला अन्तर्क्रियातिर भेला छिम बिहिबार संघर्भ अध्यक्ष विजय घिमिरे अध्यक्षतरी नेपाल फेन्सी व्यवसाय महासंघै न संघर्ष समितिले संयोजक हेटौडा पोखरा चितनर्व अध्यक्षमै पूर्व अध्यक्षमै र विभिन्न जिल्ला तथा सहभागी प्रतिनिधिमैले अन्तर्क्रिया ललो कार्यक्रमले व्यापारी मैन साझा छाता संगठन ते अझ सशक्त प्रभावकारी दिएर एकबद्ध बने उद्देश्य ते बालो व्यवसाय मेजी भोग्दी खबा विविध समस्या चुनौती दिँदा चयन समस्या समाधान उपाय बारे छ
फलफल लल भेलारी विशेष लैमरी ती धनी दिएर सटररी भाडारी सञ्चालनलाई खब व्यवसायमै माझरी करैना दायरा आपसी समन्वय सहकार्यदी व्यवस्थित बनिब विषयरी समेत महत्वपूर्ण विचार आदान प्रदान लब सहभागी मेजी बीमन लमजुङ्गरबै रायनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 10 रुम्बा प्याजु नासरी फोहोर संकलन दिएर व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन तपाई म सफा गाउँ स्वास्थ्य जीवन विवा नारा दिपालो सञ्चालन लालमगचु अभियान नासा थिमे फ्रेसिमी सक्रिय रूपारी सहभागी तपाईँ अभियानी प्याजुङ नासर्वे रायनस दसर्वे फ्रेसिमे नेपाल परिवर्तन सिपाही समूह सहभागिता मुभा आयोजक वर्षङ्गी फेटे तखुबे लागि छगयौं अन्तिमारी क्रर्ब फेटे फेरि देखे पचास मेगावाट मर्सङ्गी बेसी जल विद्युत आयोजना बनेबै लागि विद्या व्यवस्थापन सिटी जनैन नेतृत्वले पिउलो ब्याङ्गैन ऋण लगानी सम्झौता सामाजिक सञ्जाल दकिया मानव सेवा समरी मुभा कृपिउन परिवार सम्पर्क शुक्रबार पारिवारिक मिलन तसिमो दोर्दी एघरी सार्वजनिक सुनवाई उत्कृष्ट केलभ उपभोक्ता समिति सम्मान तेसवारी ज्यान मुद्दरी बहुदिया प्रतिवादी खापोहिमो नानर खबर तमुके मर्सङ्गी फेरि तखुबे लागि छिजी प्राविधिक थु मनस्य धन्यवाद पिङमारी फेरि कति क्याङ्गा खुसीमाय तमुसी विदा किमो रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज धेरै इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org यदि दिलार ओ छ्या जलो

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ्गदी एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
2: तपाईं रेडियो मर्सेङ्गी एफएम 5

0: 98490-68924, 98450-86780।
1: समिति चौदह के में बोधे लोटी पर दीरो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता खाई हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
3: आई समी जो लोटी पर दी छाता ही गुरी
2: बढ़ दी आ बढ़ दी लोटर खाले पर दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आलन फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबई बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
4: सतर्क
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
5: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैभरिलाई।